यही सांग भीम अर्जुन गटोट गाजो कटकानिंग सांबो नियनावांग पनकान मुसोह की बुकजानी लां siaga amit akan dikandang senjata apakah akan dikandang satu perabda begini wah yang memang kena kakak enak lu baris tinggal di kebun enak.